0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: ओ खिलाड़ी, आज संडे को फ्री, बोलो लोगे हमारे संग सेल्फी।

वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर, जी हाँ, आपके साथ सुबह की बेहतरीन और खास बातें। वैसे ये वो वक्त है जब लोग बहुत जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब आज के दौर में वो वक्त नहीं है ना कि भाई फ्री हैं, एक दूसरे को जाने समझे, इतना टाइम कहाँ होता है। जब जो पसंद आ गया, कभी वर्क प्लेस पे कोई पसंद आ जाता है और हम रिलेशनशिप में उसके साथ हो जाते हैं। अब वो प्यार फेक है या रियल है, ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, अगर फेक प्यार है ना, मैं आपको बता रही हूँ कुछ चीजों के जरिए आप जल्दी से वेरीफाई कर सकते हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी कि सामने वाला आपसे कितना कमिटेड रहने वाला है। देखिए, एटीट्यूड है, ईगो है, आपको वक्त ना देना है, ये सारी चीजें फेक लव में आती हैं। जी हाँ, अब सोचिए ना, आप किसी से बार बार कह रहे हैं यार मिल लो, यार थोड़ा वक्त निकाल लो मेरे लिए। बार बार अगर आपको कहना पड़ रहा है और उस बंदे को नहीं पड़ी है मिलने की, डैट मीन्स कि वो आप में बहुत इंटरेस्टेड तो नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, दोनों तरफ से ये टाइम देने की डिमांड रहती है और एक झगड़ा सा रहता है इस वक्त को लेके कि यार मिल लो, है ना, एक रिक्वेस्ट रहती है, तो बस वो प्यार जो है वही असली प्यार है। और इससे भी एक बड़ी पहचान है कि जो आपका टफ टाइम में साथ दे जाए वही आपका सच्चा हमसफर है। इसलिए इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए आप सच्ची मोहब्बत को पहचान सकते हैं। आइए आगे बढ़ती हूँ इसी बात पर एक और गाने के साथ, इंजॉय कीजिए। सी बी एंड स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रसवानी, सताक्षी आपके साथ है।

वेलकम बैक सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, ब्रेकफास्ट वाला शो जो है हमारा वो हमें ये कहता है, एक बार फिर से याद दिलाऊंगी आपको कि बहुत सारी चीजों का ख्याल हमें पूरे दिन रखना है। अपनी सेहत का तो रखना ही है, लेकिन अपने ख्यालों का, अपने थॉट्स का, अपने अपने शब्दों का बहुत होता है ना कि कभी कभी हम कुछ भी कह देते हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाले को उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उस पर कितना गहरा असर पड़ता है इस बारे में हम सोच भी नहीं पाते। तो हाँ, बहुत सारी चीजों का ख्याल आपको रखना है, सोचने समझने का ख्याल, सुनने का, आप किसी की बुराई कितना सुनते हैं या किस तरह की चीजें आप कानों से सुनकर अपने जहन में उतारते हैं और फिर आप उन्हें याद रखते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, और ब्रेकफास्ट वाला शो जो हमारा है इट हैपेंस जो है, ये आपसे यही कहता है कि ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच डिनर का भी ख्याल रखिए जनाब, और कुछ ऐसा अपने अंदर मत लीजिए जो आपके या आपकी फैमिली के लिए किसी भी तरह से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आपको, आपकी फैमिली को हर्ट करे और आपको बीमार कर दे। ठीक है जी, तो चलिए एक और गाने को एंजॉय कीजिए मेरे साथ यहाँ पे, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, एंजॉय करते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani
9: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

सस्पेंस एंजॉय करें आप सिताक्षी के साथ रेडियो प्रेस 1701 एम पर। दोस्तों बॉलीवुड के एक्टर्स के लिए भी, बॉलीवुड वालों के लिए भी बड़ी मुश्किल की घड़ी है भाई। नहीं मतलब हर घड़ी होती है, लेकिन ये घड़ी तो ज्यादा मुश्किल की है। मुझे लगता है कि अगर वो कुछ बोलते हैं तो भी वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं तो भी वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। देखिए ना, कुछ दिनों पहले सलमान खान ने इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हो रहा था उसको लेके कुछ लिखा, जिसको उन्हें तुरंत डेल करना पड़ा, लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। अब आमिर खान को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? इनफैक्ट उनकी फिल्म जो आ रही है सितारे जमीन पर, उसको लेकर उसको बैन करने की मांग उठ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। लोग कह रहे हैं कि कैसे देशभक्त हैं भाई, मतलब कैसे देश में रह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कहा। अब वो परेशान, सितारे जमीन पर बहुत एफर्ट्स के बाद बना पाए हैं आमिर खान, और उनका कमबैक अच्छा हो सकता है शायद इस फिल्म से। और ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था तब भी लोगों को बड़ा पसंद आया, लेकिन अभी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तो ट्रोलर से मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब ना मैं आमिर का साइड ले रही हूँ, ना मैं सलमान, ना मैं बॉलीवुड किसी सेलिब्रिटी का साथ दे रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम क्या सारे कामधाम छोड़ के इस ट्रोलिंग पर अटक गए हैं? मतलब कैसे करते हैं हम, फटाफट से कोई भी पोस्ट आया उस पर ट्रोल शुरू कर देते हैं। हमें अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त वक्त नहीं है क्या? मतलब कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम सारा ध्यान इस पर लगा देते हैं। लेकिन वहीं अगर हम वो जो ट्रोलिंग वाला टाइम है उसको निकाल भी लेना खुद के लिए, तो भी शायद हम कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और एक नया दिन है आपके पास में, नए अरमान है, नए सपने हैं, बहुत सारे अधूरे ख्वाब भी हैं, उन्हें पूरा कीजिए, वरना कल फिर से ये कहेंगे यार जिंदगी जी नहीं पाए, है ना। तो पूरा करते रहिए अपने सपनों को, और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए इसे एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रेस 1701।

புழவு நடிகள் புழவு मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ ना कि जिंदगी में जो भी टफ सिचुएशन आती है, जो भी पेन होता है, वो आपको एक लेसन देता है। कभी कभी जब टफ टाइम जिंदगी में आता है, हम बहुत घबराते हैं, बहुत परेशान होते हैं। कभी कभी नहीं कहूंगी, मुझे लगता है कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, खुशियां जाती हैं, गम आता है, गम जाता है, खुशियां आती हैं, ये साइकिल जो है चलती रहती है। लेकिन जब लाइफ का टफ टाइम आता है तो हम अक्सर घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कोई ना कोई लेसन जो है वो आपकी हर बुरे वक्त में छुपा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और हर पेनफुल लेसन जो है वो हर इंसान को कहीं ना कहीं चेंज करता है। थोड़ा बहुत ही सही, वो बंदा चेंज जरूर होता है। और लोग जो उसको देखते हैं वो कहते हैं, यार तुम बहुत बदल गए हो। हाँ तो भाई, वो जिस सिचुएशन से होकर गुजरा है ना, वहां पर बदलना ही था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए अगर आप भी बदल गए हैं तो आपकी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो लाइफ लेसन रहे हैं, ये उनका काम है और ये बहुत जेन्युइन है कि आप बदल गए हैं। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी। आप हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस में।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? क्या कहा? दुश्मनों से? काम से? जी नहीं, इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है अकेलेपन से। हम अकेले हो जाएंगे ये सोचते ही हम घबरा जाते हैं, हम पेन में आ जाते हैं, हमें दर्द होने लगता है ना। बहुत सारे लोग तो उन्हें पैनिक अटैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं इस बात से कि वो अकेले हो जाएंगे। जिंदगी से अगर एक पार्टनर चला जाए, हस्बैंड चला जाए या वाइफ चली जाए, तो खासकर मेल्स के साथ कहूंगी, फीमेल्स के साथ तो इतना नहीं होता है, बट मेल्स के साथ ये है कि वो दोबारा तुरंत से सोचते हैं कि मतलब एक पार्टनर लाइफ में होना जरूरी है। क्यों? और कोई रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेले ना हो जाए। हमें अकेलेपन से हमेशा डर लगता है, लेकिन जिस दिन जिस घड़ी आप अपने साथ रहना सीख जाते हैं, आप अकेले नहीं रहते, वो आपकी कंपनी बन जाता है। कितने अफसोस की बात है कि जिस इंसान के साथ हमें पूरी जिंदगी बितानी है, हम एक्चुअली उसी के साथ रहने में घबराते हैं, हम उसी के साथ रहने में डरते हैं। बहुत अफसोस की बात है। तो इसलिए अपनी कंपनी को थोड़ा थोड़ा करके एंजॉय जरूर कीजिए। हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ जरूर गुजारिए, क्योंकि जब आप खुद के साथ होते हैं तभी आप अपने अंदर झांक पाते हैं कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आपकी नीड्स क्या है। तो खुद के साथ कुछ वक्त जरूर बिताइए। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। एंजॉय कीजिए इसे भी, एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

सो फ्रेंड्स, उस मोड़ पर आ गए हम जहाँ पर अब हमारी राहें अलग होंगी, क्योंकि आपको अपने आने वाले सपनों को पूरा करना है, अपने आने वाले गोल की तरफ बढ़ना है, और बस ये मानकर चलना है कि अगर आज ये दिन आखिरी है आपकी जिंदगी का, तो आप क्या क्या जिंदगी में करना चाहेंगे और पाना चाहेंगे वो सब हासिल कीजिए आज, वो सारे लम्हे आपको जीने हैं। मैं अब आपके लिए कल के शो में क्या स्पेशल लेकर आऊंगी, मुझे उसकी तैयारी करनी है। सो चलिए, आज के इस सफर से अब इजाजत लेना चाहूंगी, विदा लेना चाहूंगी, और आपसे कहूंगी एक बार फिर से कि अपने सपनों को जीते रहिए और अपनी उड़ान को पंख देते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन
5: पाल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल, वाइन ग्लास हॉल, हिलक्रेस्ट। समाज, संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति, संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 0452-584-926। ग्रैंड भजन।
6: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
7: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
6: अरे वाह, इनका पता बताना।
7: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
8: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
9: ਡੀਜੀ ਸੈਲ better together.
10: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101.1 ते 46 संदेश शोलक दिनाल से बन चुके हो ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का तुसी की खाणा है तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो रेडियो ब्रसोनी 101.1 सर फेसबुक पेज जी ब्रसोनी @ brasoni.com साथ ही ईमेल आईडी है करिए जेड़ा तुम चंगा लगता है अपना लो सा गलबात जरूर करो तो फटाफट के जुड़ना शुरू करो मैं हूं ही वापस आने कितने जाना थोड़ा गलबात जरूर करते रहना बस तुम जुड़ना ना भूलो हम वापस आई मैं तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी कि इंजॉय करो

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश चलक दराल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वो ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसी। बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हा नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स का करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तो बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तो अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उन्हां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उन्हां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल पर पहला सुनो एक गीत।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए दस रही सी ना मैं थोनू कि अजे सितारे है जिन्हों की जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो हनी सिंह दा आउंदा है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो हनी सिंह दा शराब ते ड्रग दी लत नाल जूझना उन्हां दे करियर दा सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिस दे कारण ओह साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्हां ने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा है कि ओह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह दे नाल डुब चुके सी, जिस नाल जिस तों उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.4 एम चारचे संदेश अलग दिन से बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम हैगा वो है जी मनीषा कोइराला दा। ता मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मा विच अपनी एक्टिंग दा जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की थी, बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म दे विच कीती है। पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या हैगा है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह दे नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्होंने सेहत नु नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्होंने करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 एम ते 4-6 संदेश शलक दे नाल बने हुए। अगला जिहड़ा नाम हैगा ना, उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे, क्योंकि वह भट्ट खानदान दे नाल जुड़िया होया है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना। ते ना है शाहीन भट्ट, नाम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यह सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई सी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हां दी जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह दे नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग्या सी।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां, तो तुम दसणियां मेरा फर्ज।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ. हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया. ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं. साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए.
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999. ओपन 7 डेज. फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au. 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक. फोन नंबर 3804-3818. दैट्स 3804-3818.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
0: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस। For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha? Wo kya?
2: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus Foreign Exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
3: Lekin mama ke liye money lene kahin door jana possible nahi hoga.
2: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वन सर वाले ते जी आर चे संदेश अलग दिन तुसी बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुरानी 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम है इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब की लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, इसे करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो कि परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस थी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मा दित्तियां ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.
4: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
5: Tum bhi kitni atnok di nak tak mere raahon di makama naal, ho mere raahon di makama naal pak thak, sahaj subah nu rakhe aaye mori gal gal teni kiti aaye।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम से जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम उन्हों का है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर के गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नु रीहैब जाना पै गया से, जिस नाल उन्होंने करियर नु झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो ये सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट शामिल है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

देखो जिन्ने भी नाम मैं हुण दस्से हैगे ने ना, नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने, सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किसदा तुहानू लगता है कि ओ जिहड़ा समां उहनां दा खराब गया हैगा ओ नहीं जाणा चाहीदा सी, ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नूं ना बर्बाद करदे तां अज होर ज्यादा उपर होणे सी। दसो जरूर तुसी, जुड़ो साडे नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज है जित ब्रिसवानी @ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जेड़ा भी तुहानू चंगा लगदा है तुसी अपना उपर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तां तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे हां मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दिल में मेरे आज क्या
1: क्या है?
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
6: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
7: Event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच 2 बिलियन डॉलर दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे अनियार्षी निव्या के साथ। सबसे पहला सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या मस्ती आपने की और क्या क्या आगे की प्लानिंग है। जी हाँ, सब कुछ बताना होगा। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा यार, ऐसे कैसे सब कुछ बताना होगा, मतलब तुम क्या नार्को टेस्ट हो जो तुमको सब कुछ बता देंगे। जी हाँ, बात भी सही है। चलिए, इसी के साथ अब वीक की शुरुआत हो गई है, मतलब मंडे है आज, और आई होप आपके मंडे की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई हो। आई नो मंडेज कैन बी लिटिल ट्रिकी, बट अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि मंडे आपको अच्छे लगेंगे अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हो, और मंडे आपको अच्छे लगेंगे अगर आपको अपने काम से प्यार है। दैट्स इट। सो काम वही कीजिए जिससे मोहब्बत है आपको, जो आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे गाने के साथ। लेकिन गाने प्ले करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, और वो क्या है? वेल ऑफकोर्स वो है हमारा फेवरेट रिचुअल, मतलब हमारा एक ऐसा रिचुअल, हेल्दी रिचुअल जो हम हमेशा हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, और वही हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज भी हम करने वाले हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी एक बढ़िया से गाने के साथ, मतलब उस गाने का नाम है अभी कुछ दिनों से ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी गाने के साथ शुरुआत हम करने वाले हैं।

जी हाँ दोस्तों, तो चाशनी यानी कि मिठास तो हमने घोल दी है प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर, रुक करते हैं क्या कह रहा है मौसम, क्या कह रहा है टेम्परेचर। जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, बट अगर अभी की बात की जाए तो 22.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 22.7 डिग्री सेल्सियस के करीब ही। जी हाँ, सेम फीलिंग, सेम ही टेम्परेचर। जी हाँ, तो ये तो थी दिन की बात। अगर रात की बात की जाए तो रात को टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। और ये है टेम्परेचर का हाल। अब जरा बात करते हैं बारिश की सिचुएशन की। तो मुझे 3 बजे तक थोड़ी सी बारिश होती हुई नजर आ रही थी। अब मुझे आप बताएंगे कि आपके इलाके में बारिश हुई है, लेकिन अगर आपके इलाके में नहीं भी हुई है तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो हुई है। सो या ब्रिस्बेन के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। अगर आपके इलाके में नहीं हुई है तो फिर डेफिनेटली कुछ अलग बात है। इसी के साथ 50% बारिश के चांसेस थे होने के, और इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। जी हाँ, और कुछ इलाकों में तो एक्सीलेंट, क्योंकि जब भी बारिश होती है जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है वो भी एकदम रफू चक्कर हो जाता है। जी हाँ, तो ये है मौसम का हाल आज का। और कल की अगर बात की जाए यानी कि ट्यूसडे की एंड वेडनेसडे की, तो 26 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 70% चांसेस है बारिश होने के। ऑल्दो बादल जो है वो मुझे आसमान में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, पर 70% चांसेस बारिश कितनी मटेरियलाइज हो सकती है, मतलब कितना होगी या नहीं होगी, वो कल ही पता चलेगा। वेडनेसडे की अगर बात की जाए तो अगेन एक और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 50% चांसेस हैं बारिश होने के। तो दोस्तों, स्प्रिंगी स्प्रिंगी फीलिंग तो आ गई है और मौसम भी आपको वो फील करवा रहा है। आप मुझे बताइए आपकी स्प्रिंग फेवरेट एक्टिविटी क्या है, मतलब आपकी फेवरेट स्प्रिंग एक्टिविटी क्या है। जब भी बसंत आता है तो आपको क्या ऐसा करना पसंद है जो सिर्फ और सिर्फ आप स्प्रिंग में ही करते हो। जी हाँ, और आपको तो मैं बता दूं कि स्प्रिंग जो है वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट सीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारी चीजें पनपती हैं, और पनपना मतलब क्रिएट होना, कुछ नया क्रिएट होना नेचर में, वो अलग ही बात है, खूबसूरत बात है। जी हाँ, तो आप मुझे बताइए कि आपको भी स्प्रिंग उतना ही पसंद है जितना कि मुझे। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा हैंगओवर की तरफ जाते हैं। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ये क्या बात हो गई, मतलब तुम कहती हो लिकर से दूर रहना चाहिए, लिकर अच्छी नहीं होती। भाई, लिकर से दूर रहना चाहिए बहुत ही बुरी होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सो से नो टू लिकर, अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी है, मैं हमेशा कहती हूँ। बट यहाँ पे हैंगओवर जो है वो लिकर का नहीं है, ऑफकोर्स प्यार का है। सो सुनते हैं इसका और फिक्र और बहुत सारी बातें।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: दोस्तों इसी के साथ अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए, क्योंकि मंडे और फ्राइडे, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे, मतलब इवनिंग वाइब, और इवनिंग वाइब का मतलब आपकी फरमाइश। जी हाँ, मतलब देर आर मेनी प्रोग्राम्स जहां पर आपको अपनी फरमाइश करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम इवनिंग वाइब में आप अपने फेवरेट Are you waiting for? जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए। नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से आ जाइए और कर दीजिए फरमाइश। और इनफैक्ट अगर आप किसी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आ जाइए, और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंसान जो है वो इतने अच्छे एथलीट्स नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन रोबोट्स जो है वो उससे ज्यादा अच्छे एथलीट बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी की सारी कंट्रीज जो है वो अभी नॉर्मल छोटे मोटे रोबोट्स बना रही हैं, और चाइना ने लिटरली लिटरली रोबोटिक एथलीट्स की ओलंपिक करवा दी। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे हैं What are you talking about, Nivea? Well, अभी तक आपने ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियोस देखी ली होंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी ये इंटरनेट पर दैट एवरीबडी लिटरली एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट इट। सो रोबोट जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलों में जो है वो हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और ये हमारी कंट्री में या किसी और कंट्री में नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चाइना में हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि चाइना ने ये रोबोटिक रेस में जीत हासिल कर ली है, और इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। मतलब अमेरिका छोड़िए, कोई भी और कंट्री, मतलब अमेरिका तक भी इसमें लीग में उनके साथ नहीं है। मतलब दे आर लीग अपार्ट नाउ। जी हाँ, सो जैसे मैंने कहा कि ये जो गेम्स है ये ऑर्गेनाइज की गई थी चाइना की तरफ से, जहां पर रोबोट जो है वो बॉक्सिंग, रेसलिंग, रनिंग और क्या क्या नहीं खेलते हुए नजर आए। मतलब आप गेम्स का नाम लो और वो सारी की सारी वही गेम्स खेल रहे थे। इनफैक्ट वो इतने ज्यादा तेज दौड़ रहे थे कि उन्होंने एक बहुत ही बड़े और लेजेंडरी एथलीट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब रोबोट्स जो है वो रोबोट्स का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रोबोट्स इंसानों का रिकॉर्ड क्यों तोड़ेंगे? वेल वेल वेल, ये भी एक कहानी है व्हिच आई एम गोना टेल यू, लेकिन पहले मैं आपको एक और मजेदार सा गाना यहां पर सुनाने वाली हूं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 hectares ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
3: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
4: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनिया शनिवा के साथ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैसे चाइना जो है वो बहुत ही गजब तरीके से बहुत कुछ कर रहा है और उन्होंने गेम्स जो हैं, रोबोटिक गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज की हुई थी जिसमें बहुत सारी गेम्स खेलते हुए रोबोट्स नजर आए, यानी कि टेबल टेनिस के अलावा रनिंग, बहुत सारी चीजें। एंड गेस व्हाट, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई चीज वो ये थी कि उनमें से जो रनिंग वाला जो सेशन हुआ, जो रनिंग वाली जो गेम थी, उसमें एक रॉबर्ट ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी हाँ, वो 100 मीटर्स 9.39 सेकंड्स में दौड़ा, जो कि उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड्स का। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि बट व्हाट इज दिस रबिश, मतलब अब कार और ह्यूमंस का कंपटीशन थोड़ी हो सकता है भागने में, सो रॉबर्ट्स कैन नॉट बी लाइक सेम एज ह्यूमंस, राइट? ऑफ कोर्स यू आर राइट, और यही मेरे दिमाग में भी चल रहा था। बट यहां पर चाइना ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वी हैव सम प्रीटी फास्ट रॉबर्ट्स। एंड गेस व्हाट, द फनी थिंग इज कि जब वो भाग रहे थे वो सिक्योरिटी यानी कि सेफ्टी वॉल में जाकर टकरा गए, और जब वो टकराया तो इतनी तेज वो भाग रहा था कि टकराने के बाद उसकी मुंडी जो है वो एकदम लटक गई। जी हाँ, मतलब उसका सर जो है, जो उसका हेड था, वो लटक गया। आप लोग बोलोगे तो होना जो यही था भाई, अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, इंसान इंसान है, रॉबर्ट रॉबर्ट है। इंसान और रोबोट कभी भी सेम नहीं हो सकते, बट यहाँ पर एक चीज जो है वो देख ली गई है, और वो क्या है कि रोबोट्स जो हैं, रोबोट्स खासकर चाइना के रोबोट्स, वो इतने ज्यादा तेज हैं कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ने में भी कामयाब है, वो बहुत सारी हरकतें करने में भी कामयाब है, वो खेलते भी हैं, वो बॉक्सिंग भी करते हैं, और वो बहुत ज्यादा रियल भी दिखते हैं। जी हाँ, सो ना सिर्फ गेम्स बल्कि बीजिंग में उन्होंने रोबोटिक कॉन्फ्रेंस भी रखी, जहां पर बहुत ही रियल दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को देखा गया। मतलब उसमें से एक फीमेल रोबोट को अगर आप देखते तो आप कहते ओ माय गॉड, ये तो इंसान ही लग रही है, मतलब क्या रही थी वो। कोई भी इंसान अगर उसे दूर से देखता, जिसको नहीं पता होता कि वो रोबोट है, वो तो लट्टू हो जाता, वो इतनी सुंदर दिख रही थी। और इससे चाइना क्या दिखाने वाला है और क्या दिखा रहा है कि भाई हमने तो वो अचीव कर लिया है जो दुनिया में और किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया है, सो डोंट यू डेयर कम एट अस, क्योंकि हम लोग रोबोट से खेल खिला सकते हैं, तो रोबोट से वॉर भी करवा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी काफी सारी बॉर्डर्स पर भी कुछ रोबोट्स को डिप्लॉय किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो या चाइना जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और एक रोबोट ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑफकोर्स ये रोबोट जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने में कितना ज्यादा कामयाब रहा वो तो हमें पता ही है, लेकिन रोबोट और ह्यूमंस के बीच में कोई मतलब क्या, मतलब वो तो लीग ही सेम नहीं है ना। बट द थिंग इज कि चाइना ये प्रूव कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा आ गया है इस मामले में, रोबोटिक और एआई रेस में। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

सब्जियां दोस्तों और इसके साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर एक फरमाइश हमारे पास आ गई है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी की तरफ से, उसे प्ले करने का वक्त हो गया। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी प्यारी फरमाइशें करने के लिए। बता दें फरमाइश है गाना लाख जतन कर हारी। जी हाँ, शुजात अली खान का ये गाना है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह जबरदस्त फरमाइशों के लिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक सा और अजीबो गरीब सा किस्सा जो है वो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर एक पिता अपने 7 साल के छोटे से बेटे को जो है वो माउंट फूजी की हाइक पर आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और अपनी हाइक को कंटिन्यू करते हैं अपने एक और बेटे के साथ। जी हाँ, वो छोटा बेटा जो कि वहां पर बैठा होता है, जिसको कहा गया होता है उसके पिता के द्वारा कि ओके, यू नो व्हाट, तुम यहाँ पर वेट करो और हम तुम्हें मिलेंगे, वो उस तक आए ही नहीं, मतलब वो उससे मिलने पहुंचे ही नहीं। वो अपनी हाइक में आगे को निकल गए, वो अपने छोटे बेटे को भूल गए। उसके बाद बेचारा एक हट जो कि वहीं पर थी, एक बंदा जो कि वहीं पर रहता है पास के इलाके में, उसने जब उस छोटे से बच्चे को देखा, तब उसे पता चला कि उसके पिता ने उस बच्चे को उधर रुकने के लिए कहा है और वहां पर वो खुद आगे निकल गए। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि एलो जी, ऐसे भी पापा लोग होते हैं। जी हाँ, मुझे नहीं पता था ऐसे भी पापा लोग होते हैं, बट इस दुनिया में बहुत ज्यादा अजीबो गरीब लोग हैं। सो ये स्टोरी है एक 48-year-old जापानीज फादर की। ही वॉज रिपोर्टेडली रिबुक्ड बाय पुलिस आफ्टर लीविंग हिज 7-year-old सन अलोन ऑन माउंट फूजी वाइल कंटिन्यूइंग द हाइक विद हिज ओल्डर सन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट माउंट फूजी एंड इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल प्लेस, इट्स माउंट फूजी। जी हाँ, सो वो जो बच्चा है उसने कंप्लेन किया कि वो थोड़ा थका थका फील कर रहा है और वो आगे नहीं जा पाएगा। तो उसके पिता ने कहा कि ओके, तुम ऐसा करो, यहाँ पर बैठ जाओ। एक ट्रेल थी वहां पर जो है उसे बैठने के लिए और वेट करने के लिए कहा। और ये मोर देन, मतलब अगर आप इसकी ऊंचाई देखोगे तो इट वाज मोर देन 2000 meters अबव सी लेवल। मतलब जहां पर वो बच्चा था वो भी कोई नॉर्मल, कोई नीचे बेस कैंप वाली सिचुएशन नहीं थी, वो भी काफी ऊपर था। इट्स जस्ट दैट कि वो बच्चा थक गया और वो अपने पिता से कहता है कि मुझसे आगे नहीं चला जा रहा है और मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं ओके, चलो वेट करो यहाँ पर। जी हाँ, और यहाँ पर ये माउंटेन हट वर्कर जो है वो उस बच्चे को वहां पर बैठा हुआ पाता है, जो कि अंधेरे उस फोगी सी सिचुएशन में, रेनी कंडीशन में जो है वो वहां पर अकेला बैठा होता है। और 7 साल का बच्चा क्या ही होता है, लेकिन उस पिता को भी कोई पूछे कि मतलब बेटा तुमको इतना क्या ही है, मतलब तुमको इतनी क्या ही पड़ी है माउंट फूजी चढ़ने की कि तुम अपने बेटे को ही भूल गए, लिटरली मतलब इतना भी क्या पैशन, इतने भी क्या एडवेंचर करने की चाहत है कि तुम अपने छोटे से बेटे को जो है वो वहां पर भूल गए। जो हाँ, उसी के बाद ऑफिसर ने जो है वो ट्रैक डाउन किया, ऑफिसर्स ने, और उस फादर को जहां पे वो 8 स्टेशन के पास जो है उसे रुकने के लिए कहा और आने के लिए कहा, फिर उसके बाद जो है उसको वहां पर सजा भी दी गई। अब सजा तो मिलनी चाहिए भाई, मतलब आप पेरेंट हो तो आपको अच्छा पेरेंट बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इंसान को पेरेंट नहीं बनना चाहिए या तो उसे अच्छा पेरेंट बनना चाहिए। आई डोंट नो एक बंदे के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था, लेकिन मैं सोचकर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही हूँ कि एक बच्चा जो है वो लिटरली माउंट फूजी के एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है क्योंकि वो आगे नहीं चल पाया, और उसके पिता को और उसके एक और भाई को ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, तो वो आगे को निकल जाते हैं और उसको बोलते हैं यही वेट करो, और फिर उसको वेट करवाकर उसे भूल जाते हैं। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, इस वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाते, वो लिटरली भूल ही जाते हैं अपने बेटे को। सो मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों को पहले ऐसी जगहों पर ना लेकर जाएं, और अगर लेकर ही जाना है तो सबसे पहले उनका ख्याल रखें। जी हाँ, और अच्छे पेरेंट बने, मतलब मैं दुनिया के सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी। जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की तरफ, रुख करते हैं क्या चल रहा है खबरों की दुनिया में, क्या हो रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं और शुरुआत करते हैं भारत की खबर से। जी हाँ, महाराष्ट्र अमरावती के अस्पताल में आग लगने से 3 नवजातों की मौत। जी हाँ, बिल्कुल।

अच्छी खबर नहीं है भारत से। भारत के महाराष्ट्र के अमरावती में सोमवार तड़के जिला महिला अस्पताल की NICU में आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई। अमरावती के जिला सर्जन डॉ विनोद पवार ने बताया कि अगर आग लगने की सूचना सुबह करीब 3:30 पर मिली। जिस वार्ड में आग लगी उसमें 9 बच्चे थे। दमकल कर्मियों ने 6 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चों को निकालने में वे असफल रहे। डॉक्टर पवार ने यह भी बताया कि जिन 6 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया था उनकी हालत अब स्थिर है। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार मृतक बच्चों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हूं, मैंने उन्हें सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं, प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है, मैंने इस संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा की है।

0: ताल इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: And you are listening to Radio Briswani. Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meat Brothers.
4: And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: And you are listening to Radio Briswani.
7: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
12: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए? डीजीसेल आपको दे रहा है मौका To win one of the fuel vouchers or shopping vouchers worth $100 every week. Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
13: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
14: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ खबरों की बात हो रही है, वहीं गिनी में कचरे का पहाड़ ढहने से 30 लोगों की मौत और 22 लोग घायल। जी हाँ, गिनी की राजधानी कोनार्की में भारी बारिश के बाद कचरे का पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर जा गिरा। इस हादसे में कम 30 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 22 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में छह की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हादसा शहर के डार एस सलाम इलाके में स्थानीय समय अनुसार रात करीब 2 बजे हुआ। गिनी सरकार के मुताबिक भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर अचानक ढह गया, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सरकार ने राहत और बचाव अभियान के लिए सेना समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को मौके पर तैनात किया है। स्थानीय मीडिया से बातचीत में एक महिला ने बताया कि हादसे में उसके 5 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग दबे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे गिनी के प्रधानमंत्री आमादो ओरी बान के स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले स्थानीय नेता लांसिनो सिला ने समाचार एजेंसी AAFP को बताया था कि हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका बनी हुई है।
5: It's P on the track. Let's go.

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहां न्यूयॉर्क से भी अच्छी खबर नहीं है। न्यूयॉर्क में गोलीबारी हुई है और गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है। जी हां, ये वहां के वाणिज्य दूतावास ने जानकारी दी है। सो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में गोलीबारी की एक घटना में भारतीय नागरिक की मौत हो गई। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बताया कि घटना में मरने वाले शख्स का नाम गुरदीप सिंह है और अधिकारी उनके परिवार के संपर्क में हैं। दूतावास ने लिखा कि हमें भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह के असमय निधन की खबर से बहुत दुख हुआ। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में उनकी अपनी जान चली गई। भारतीय कॉन्सुलेट ने आगे लिखा कि इस मुश्किल समय में हमारी संवेदनाएं, दिल से सहानुभूति उनके परिवार के साथ है। दूतावास परिवार के संपर्क में है और हर संभव मदद कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार रात ईस्ट न्यूयॉर्क इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति के साथ कहासुनी के बाद 27 वर्षीय गुरदीप सिंह को गोली मार दी गई। वारदात के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया और पैरामेडिक्स ने गुरदीप को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका ने ईरान पर अभी तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला किया है, ये कहा है अमेरिका के वित्त मंत्री ने। जी हाँ, सो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेट ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला करने वाला है। जी हाँ, किया नहीं है, करने वाला है, जो कि धमकियां ये हमेशा देता है। स्कॉट बेंसेट ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत खत्म कर दी है और अब आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा अभियान शुरू होगा। वित्त मंत्री बेंसेट ने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है, उसकी करीब 100% सैन्य फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया है। अब हम आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं, सुबह होते ही आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा अभियान शुरू होगा, किसी विरोधी के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला। उन्होंने लिखा कि ईरान के शासन ने सुरक्षा की गारंटी के नाम पर धमकी और दबाव के सहारे खुद को चलाया है। उसे भरोसा था कि अगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो वो जवाबी हमला जरूर करेगा और अमेरिका की कार्रवाई को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद अब ये दौर खत्म हो गया है। जो लोग ईरान का विरोध करने से डरते हैं, उन्हें अमेरिका को चुनौती देने की कीमत को कम नहीं आंकना चाहिए। बेंसेट ने लिखा कि राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति बना दी है कि हर एजेंसी इस अधिकार और उन सभी कदमों का इस्तेमाल कर किया जा सके जिनके बारे में कई लोगों ने सोचा था हम उन्हें कभी नहीं अपनाएंगे। हमारा लक्ष्य उस तानाशाही सरकार को सहारा देने वाले हर आर्थिक रास्ते को खत्म करना है और बंद करना है जहां तक कि ईरानी शासन पूरी तरह अकेला ना रह जाए। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्री बेंसेट ने अपनी इस एक्स पोस्ट में ये जानकारी नहीं दी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अब क्या कदम उठाने वाला है। मतलब सारी बातें हो रही हैं, एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये नहीं बताया गया है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ, फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर +91 8448381360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
8: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
7: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
8: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
9: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
10: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
9: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
10: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
9: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
10: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
11: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 0400-644-35 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
12: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और इनफैक्ट सिर्फ कल ही नहीं, मैंने कुछ वक्त पहले भी ये मीम देखा था और मुझे ऐसा लगा कि बात एकदम पते की है तो जरूर मेरे लिसनर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। और उसमें कुछ लिखा हुआ था कि यू नो व्हाट, जब भी आप किसी कॉमेडियन को, मतलब आप किसी कमेडियन को इतने सारे पैसे पे करते हैं टू से समथिंग लाइक लिटरली कुछ ऐसा जो कि आपको बुरा लगे, मतलब आजकल के जो स्टैंड अप कमेडियंस हैं वो सारे के सारे इतनी खतरनाक सी चीजें जो हैं वो कहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको रोस्ट भी करते हैं, लेकिन तब आपको कुछ भी फील नहीं होता है, तब आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, लेकिन जब आपको कोई और कुछ बुरा बोलता है तो आपको बुरा लगता है। मतलब कुछ मीन अगर आपको कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बोले जिसके लिए आपने इतने सारे पैसे पे किए होते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई इंसान अगर आपको वही बोल दे तो आपको बुरा लग जाता है। जी हाँ, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि वही लिखा होता है, यू विल पे गुड मनी टू हेयर अ कॉमेडियन से समथिंग ऑफेंसिव बट व्हेन आई से इट फॉर फ्री यू गेट जी हाँ, आई एम द बैड गाय देन। जी हाँ, आई वाज लाइक या आई मीन दिस इज सो ट्रू। इतना मुझे ये सच्चा लगा कि मुझे इसे रीशेयर करना पड़ा। अगर आपने नहीं सुना ध्यान से सुनिए कि यू विल पे गुड मनी टू हेयर अ कॉमेडियन से समथिंग ऑफेंसिव बट व्हेन आई से इट फॉर फ्री आई एम द बैड गाय। जी हाँ, मतलब हम अगर कुछ बोलते तो हम बुरे हैं, लेकिन वही चीज अगर कोई कॉमेडियन बोले जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है तो आप मजे से हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लेते हो, ये क्या बात है। और उसके लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, हम बिना पैसे के बोल देते हैं लेकिन फिर भी हम लोग बुरे हैं, ये क्या बात बनी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा।

आँखों से हटाया चश्मा आँखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों एक गाना है जो कुछ दिन से मेरे दिमाग में चल रहा है और ये गाना इतना खूबसूरत है और ये गाना खूबसूरत होने के साथ कुमार सानू की आवाज में आपको सुनने को मिलने वाला है। जी हाँ, ये गाना जो है वो बहुत नया नहीं है, ये अर्ली 2000s का गाना है, लेकिन निमृत कौर इसमें इतनी खूबसूरत लग रही है और वो जो बॉलीवुड का एक थीम है ना कि पहली नजर में जो प्यार हो जाता है, मतलब लड़की जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है, उसकी जुल्फे जो है वो हवा में लहलहा रही है, वो मस्ती कर रही है, वो अपनी ही उमंग में जो है वो नजर आ रही है और तभी दूर खड़ा एक हैंडसम सा लड़का उसे देखता है और वो उसके प्यार में वहीं पड़ जाता है। लड़की की नजर लड़के से मिलती है, पर उसके बाद जो है उनको ऐसा लगता है कि ओके, ये भी मुझे देख रहा है और वो भी मुझे देख रहा है। लड़के को तो प्यार पहले ही हो गया है, लेकिन लड़की भी सोच रही है कि ये लड़का है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत। दोनों की मुलाकात थिएटर में होती है, दोनों एक साथ एक एक अलग अलग सीट्स पे बैठते हैं, मतलब साथ वाली सीट्स में बैठते हैं और फिर उसके बाद जो है उनकी नजरें फिर से मिलती है और फिर उसके बाद क्या होता है, वेल उसके बाद प्यार होता है, क्योंकि अर्ली 2000s का फेवरेट थीम यही था, प्यार पहली नजर से ही हो जाता है और पहली नजर से जब नजर मिलती है तो उसके बाद देर इज नो गोइंग बैक। सो ये गाना ऐसी ही थीम पर है और यही गाना जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा है। कुछ दिन पहले मैं इसकी इतनी ज्यादा फैन बन गई कि मुझे लगा मुझे मेरे लिसनर्स को ये गाना जरूर सुनाना चाहिए। ये है तेरा मेरा प्यार, कुमार सानू का गाना।

दोस्तों मुझे यकीन है, मतलब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोगों को ये गाना बहुत बहुत पसंद आया होगा। जैसे मैंने कहा कि ये खूबसूरत सी थीम पर बना है कि लड़के को लड़की दिखती है, उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है और लड़की को भी प्यार हो ही जाता है, थोड़ा धीरे होता है बट हो जाता है। सो ये फेवरेट थीम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। प्लस ये कुछ भी इसमें ये नहीं है कि मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है कि हाँ ऐसा स्क्रिप्ट्स में ही होता है या फिर ऐसा फिल्म्स में ही होता है, ऐसा रियल में भी होता है। इसलिए मैं कहती हूँ वो जो नजर है ना, वो जो आंखों ही आंखों से, वो जो आंखों से प्यार होता है ना, और आंखों ही आंखों में प्यार होता है, वो सबसे ज्यादा लीथल है। बच के रहिए जितना बच सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब प्रोग्राम अपने उस खूबसूरत मोड़ पे पहुंच गया है जहां पर हम शुरुआत करने वाले अपने फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की। सो ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है। आई होप आपके पास फरमाइशें हैं, क्योंकि हमारे पास फरमाइशें आ गई हैं। यहाँ पर सबसे पहला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं इस सेगमेंट को शुरू करने के लिए, वो है एक बहुत ही खूबसूरत गाना, नजर आती नहीं मंजिल, रफी साहब का गाया हुआ ये गीत। ये फरमाइशी गीत है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से, उनकी फरमाइश है ये। थैंक यू सो मच विशाल जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशों के लिए। और बिना देर किए हम ये प्ले करेंगे। सो दोस्तों आप सब भी अपनी फरमाइशें लेके आ जाइए, और फरमाइश होनी चाहिए पुराने गानों से रिलेटेड, दैट इज द ओनली शर्त वी हैव, अदरवाइज बाकी सब बढ़िया है। किससे हम आपको सुनाएंगे, गपशप भी हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले ये गाना।

जी हाँ, मैं तो ये कहूंगी कि गाना डेफिनेटली बहुत खूबसूरत है, बट इसकी फील लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाना खूबसूरत है बट हम जो फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, और हमको हार्ट ब्रेक या हमको कोई भी सैड चीज अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं करनी है. सो सीधी सी चीज है, सैड सॉन्ग सुनने हैं तो एक आध बार सुनिए, लेकिन उसको फीलिंग जो है लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है. जी हाँ, आज दिन तक आपको ये कहा गया है कि आप जो बोलोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जो आप सुनोगे वो भी आप अट्रैक्ट करोगे. सो हमेशा अच्छी चीजें सुनिए, खूबसूरत चीजें सुनिए, मस्ती वाली चीजें सुनिए, ताकि जो भी आप अट्रैक्ट करो वो अच्छा हो, हैप्पी हो, मस्ती वाला हो. जी हाँ, सैड गाने अच्छे लग सकते हैं, कॉम्पोजिशन प्यारी हो सकती है, पर अगर उनकी फीलिंग ले ली तो यूनिवर्स भी कहेगा अच्छा तुमको फीलिंग लेने में मजा आ रहा है, थोड़ी सैडनेस दे ही देते हैं. जी हाँ, दैट्स हाउ यूनिवर्स वर्क. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट आप क्या कह रहे हो, और आप जो कह रहे हो वही यूनिवर्स आपको देगा, जो आप सुन रहे हो वो भी यूनिवर्स आपको देता है. सो ध्यान से सुनिए और ध्यान से बोलिए, और यहां पर एक और गाना हमारी तरफ से.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. दोस्तों इसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो कि हाथी मेरे साथी मूवी का है. अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाथी मेरे साथी जो है वो बहुत ही बड़ी हिट मूवी है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट उतनी अच्छी नहीं थी. जी हाँ, जब राइटर ने उसकी स्टार्टिंग की स्क्रिप्ट दी थी तो वो इतनी अच्छी नहीं थी. अब किस्सा ऐसे शुरू होता है कि राजेश खन्ना, जो कि अभी स्टार्टिंग में हिट हुए थे और हिट के साथ वो सुपर हिट होना भी शुरू हुए थे, तो उनकी दोस्ती हो जाती है सलीम और जावेद के साथ, यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर साहब के साथ. जी हाँ, और उसी वक्त उन्हें ये फिल्म ऑफर होती है. और इस फिल्म को जब ऑफर करते हैं प्रोड्यूसर्स राजेश खन्ना को, तो राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट ही 2.5 लाख रुपए मिलती है. जी हाँ, लेकिन जब 2.5 लाख रुपए वो लेते हैं और फिर वो देखते हैं स्क्रिप्ट को, तो उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैंने ये मूवी की जो कि इस स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, तो मैं तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बुरी है. लेकिन वो 2.5 लाख रुपए भी वापस नहीं करना चाहते थे जो कि प्रोड्यूसर ने उन्हें दिए थे, क्योंकि वो मनोज कुमार से, राजेंद्र कुमार से वो घर ले रहे थे. जी हाँ, राजेंद्र कुमार से वो उनका बंगला ले रहे थे, और उन्होंने 4.5 लाख रुपए में राजेंद्र कुमार से वो बंगला लेना था, जिसकी 2.5 लाख रुपए वो पहले ही दे चुके थे, जो कि इसी हाथी मेरे साथी की साइनिंग अमाउंट थी. फिर क्या था, वो सलीम जावेद के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, मैं एक बंगला खरीद रहा हूं और जो कि है राजेंद्र कुमार का, अब मैं उसके लिए 2.5 लाख रुपए दे चुका हूं, जो कि मुझे साइनिंग अमाउंट मिली है इस फिल्म की. प्रोड्यूसर ने मुझे इतना बड़ा चेक दिया है कि मैं वापस करना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने ये वापस नहीं किया और मैंने ये पिक्चर कर ली, तो डेफिनेटली मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा. तो तुम कुछ करो ना, इसे कुछ अच्छा कर दो, इसे थोड़ा ठीक कर दो, ताकि ये काम चलाने लायक हो जाए. फिर क्या है, उसका स्क्रीन प्ले जो है वो लिखने को आता है जावेद अख्तर साहब एंड सलीम खान के पास, और इसके लिए राजेश खन्ना उन्हें 10,000 रुपए भी दिलाते हैं, जो कि उस वक्त काफी बड़ी रकम मानी जाती थी किसी भी स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट के लिए या राइटर के लिए। फिर क्या था, राजेश खन्ना जो है उन्हें पैसे दिलाते हैं और यहाँ पर जावेद अख्तर और सलीम खान भी उनकी जो है मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन पर खरा उतरते हैं। वहां पर वो हाथी की एंट्री करवाते हैं जो कि पहले उस स्क्रीन प्ले में नहीं थी, पहले उस स्क्रिप्ट में नहीं थी, और फिर ये मूवी बनती है हाथी मेरा साथी, क्योंकि जो चीजें थी वो वैसे ही थी लेकिन जो बाकी की चीजें एड ऑन की जाती हैं जावेद अख्तर साहब की तरफ से और सलीम खान के साहब से, वो थी हाथी वाली मूवमेंट्स। मतलब हाथी जो करता है, उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट में अब जो भी करेगा वो हाथी करेगा, और प्रोड्यूसर्स को भी ये पसंद आ जाता है। रिजल्ट ये होता है कि मूवी बहुत ही ज्यादा हिट होती है, राजेश खन्ना को अपना बंगला मिल जाता है, सलीम जावेद को 10,000 मिल जाते हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना आउट भी नहीं होते। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जा रहे हैं हम वापस, अब आएंगे कल। लेकिन आपको क्या करना है? वेल ऑफ कोर्स आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना, खाते रहना है। और जैसे मैंने आज बात की है, आपको अच्छा बोलना है, क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। और आपको सुनना भी अच्छा है, यानी कि हंसती हंसती मस्ती मस्ती वाली चीजें, तो ही आप सारी की सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। सो हमेशा अच्छी हरकतें कीजिए, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी चीजें सुनिए, काइंड बनिए। दैट्स अबाउट इट। और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.

ना बदला मैं, ना बदला वो, ना बदला तू। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर, अब है ट्विटर, पहले थी बुक, अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम, अब है इंस्टाग्राम।

0: Pourquoi?
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आया तो सबने बोला एक होयो भाया। नाम से डोनाल्ड ट्रंप और हरकत से डोनाल्ड डक नजर आया तो मैंने कहा वो डोनाल्ड

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। पैरा फ्यूचर्स कप का ऐलान। ब्रिस्बेन 2032 पैरालंपिक खेलों की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने उभरते हुए पैरा एथलीटों के लिए नए पैरा फ्यूचर्स कप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। वहीं फ्यूचर ग्रीन प्लस गोल्ड टैलेंट हंट। ब्रिस्बेन 2032 की तैयारियों के तहत क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया भर से 340 से ज्यादा नए युवा एथलीटों को खोजा गया है, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पैरा स्पोर्ट्स के लिए भारी फंड आवंटन। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ब्रिस्बेन ओलंपिक और पैरालंपिक की नींव मजबूत करने के लिए पैरा अपलिफ्ट प्रोग्राम में $10 मिलियन से अधिक का नया फंड जारी किया है। वहीं क्वींसलैंड स्कूल कंपटीशन की शुरुआत। ब्रिस्बेन के लोकल स्कूलों में 2032 के ओलंपिक विजन को ध्यान में रखते हुए एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स मीट के नए सीजन की शुरुआत की गई है। वहीं विक्टोरियन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नया विजन। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ब्रिस्बेन और आसपास के ट्रेनिंग सेंटर्स में नए अंतर्राष्ट्रीय कोचों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ कम्युनिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पोर्ट, जी हां, ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड के लोकल पैरा स्पोर्ट्स क्लबों को आधुनिक ट्रेनिंग उपकरण और किट्स उपलब्ध कराने के लिए $2.8 मिलियन के नए स्पोर्ट पैकेज की डिलीवरी शुरू हो गई है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली NCR में बदला मौसम, रेड अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अजीत डोभाल का चीन दौरा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्रिक्स समिट से पहले चीन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अपनी चीनी समक्ष से मुलाकात कर सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की चर्चा की है। वहीं विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की रूस यात्रा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 27वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर बड़े समझौते होने की उम्मीद है। वहीं चंद्रयान 3 की सालगिरह पर स्पेस स्टार्टअप से पीएम की मुलाकात। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 प्रमुख स्पेस स्टार्टअप्स के प्रमुखों से मुलाकात की और भारत को ग्लोबल स्पेस हब बनाने के लिए युवाओं का हौसला बढ़ाया। वहीं भारतीय रेलवे का नया रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मुंबई के JNPT से वडोदरा तक 1.3 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सफलतापूर्वक चलाकर माल ढुलाई के क्षेत्र में नया मील का पत्थर हासिल किया है। वहीं उत्तराखंड की नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बारिश के कारण खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले न्यूजीलैंड में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर सख्ती। न्यूजीलैंड सरकार ने आज एक नया बिल पेश करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का प्रस्ताव है। वहीं चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीजिंग के आयोजित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोटिक गेम्स में तियंगनांग अल्ट्रा नाम के रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ महज 9.39 सेकेंड्स में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अमेरिका के रीनो शहर में जंगलों की आग से अफरा तफरी। अमेरिका के निवेदा स्थित रीनो शहर के पास भीषण वाइल्डफायर फैलने की वजह से आसपास के लगभग 42,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। वहीं फ्रांस में मरीन ले पेन के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का रास्ता साफ। पेरिस कोर्ट ऑफ अपील ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मरीन ले पेन को आगामी फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। वहीं कतर और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत जारी। कतर ने कहा है कि वह अपने हवाई क्षेत्र से जुड़े मामलों के बाद स्थिति को संभालने के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्च और बचाव अभियानों की समीक्षा पर बातचीत कर रहा है। वहीं पोटैटो चिप्स इन्वेंशन दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलू के चिप्स की खोज और इसके इतिहास को याद किया जा रहा है। दुनिया भर की फूड इंडस्ट्रीज आज पोटैटो चिप डे के तौर पर कई इवेंट्स आयोजित कर रही है। वहीं अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले देवदत्त पडिक्वल का शानदार शतक। भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्वल ने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में अपना दूसरा टेस्ट शतक जड़कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। वहीं लेग स्पिनर करण शर्मा ने लिया संन्यास। भारतीय लेग स्पिनर करण शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसी के साथ मीराबाई चानू करेंगी एशियन गेम्स में भारतीय दल की अगुवाई। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत की वेट लिफ्टिंग टीम का नेतृत्व करेंगी। वहीं हॉकी वर्ल्ड कप भारत बनाम अर्जेंटीना का मुकाबला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए आज अर्जेंटीना के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। वहीं पैन पैसिफिक स्विमिंग में ऑस्ट्रेलिया का शानदार प्रदर्शन। पैन पैसिफिक स्विमिंग चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट, कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त, 04525849926। ग्रैंड
7: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
8: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
7: अरे वाह, इनका पता बताना।
8: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
9: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: सुकू
1: आया करूं मैं क्या सुकू सुकू खो गया दिल मेरा सुकू सुकू आया करूं मैं

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिन से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला हो चुका है जी। शुरू ते इन्हां गल्लां नूं सुलगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो सोनी 101.1 सर फेसबुक पेज अजीत बिस्वानी @biswani.com साथ ही ईमेल आईडी है जरिया जेड़ा तुम चंगा लगता है तुम अपना लो सा गल बात जरूर करो। तो फटाफट के जुड़ना शुरू करो। मैं हूं ही वापस होने कितने नहीं जाना, तो गल बात जरूर करते रहना। बस तुम जुड़ना ना भूलो। हूं वापस आई मैं, तुम उन्होंने समा इन्होंने सोने जी गीता इंजॉय करो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश चलक दराल से बने हुए। देखो शराब दी लत हुंदी है ना जेड़ी वो ना सिर्फ सेहत दे लई बहुत ज्यादा हानिकारक हुंदी है बल्कि शरीरिक मानसिक अते समाजिक जीवन नूं भी हौली हौली ना बर्बाद ही कर दिंदी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच वी अजिहा होया है। बिल्कुल सही सुनिया तुसीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री विच अजिहे कई सितारे हैगे ने जिन्हां नूं शराब दी लत लग गई सी। इस बुरी आदत ने कई सारे एक्टर्स का करियर हैगा ने जिहड़ा तबाह कर दिता सी ते कई कलाकारां दी जिंदगी नूं मुश्किल बना दिता सी। कुछ सितारियां ने इस लत तो बाहर निकल के अपनी जिंदगी सवारी ते कुछ इस दे शिकार बन के रह गए। तो अज मैं तुहानूं बॉलीवुड दे कुछ उन्हां स्टार्स बारे दसूंगी जिन्हां दी शराब दी लत ने उन्हां दे करियर अते जीवन ते बहुत ही ज्यादा डूंगा असर पाया सी। केड़े केड़े ने इस लिस्ट विच करदे उन्हां बारे गल, पर पहला सुनो एक गीत।

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। Queensland सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित authorized by the Queensland government।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 जी आर जे संदेश अलग दिन से बने हुए दस रही थी ना मैं थोनों के केड़े अजे सितारे है जिन्हों की जिंदगी शराब के नशे ने खराब करती सी। इस दे विच सब तो पहला नाम यो यो हनी सिंह का आता है। देखो बॉलीवुड ते पंजाबी सिंगर यो यो हनी सिंह का शराब ते ड्रग की लत नाल जूझना उन्हां दे करियर का सब तो चुनौतीपूर्ण दौर रहा सी, जिसके कारण साल 2012 तो 2022 दे विचकार ना म्यूजिक इंडस्ट्री तो लगभग गायब हो गए सी। उन्होंने खुद इस गल नूं स्वीकारिया हैगा कि वह शराब ते नशीली दवाइयां विच बुरी तरह के नाल डुब चुके सी, जिस नाल जिस तो उन्हां नूं निकलण विच लगभग 8 साल का समा लग गया सीगा।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी तक फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने 101.4 चारचे संदेश अलग दिन बने हुए इस लिस्ट विच अगला जेड़ा नाम है वह है जी मनीषा कोइराला का। तो मनीषा कोइराला ने ना एक तो एक फिल्मों विच अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरिया है। उन्होंने बहुत सोहनी अदाकारा की है, तो बहुत ही सोहनी अदाकारा एक्ट्रेस है अदाकारा हैगी है, तो बहुत ही वधिया एक्टिंग हर फिल्म दे विच कीती है। पर उन्होंने शराब की लत नाल बहुत लंबा संघर्ष किया। मनीषा ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्हों की जिंदगी शराब की लत की वजह नाल पूरी तरह के नाल बिखर गई सी। इस लत ने ना सिर्फ उन्हां दे सेहत नूं नुकसान पहुंचाया बल्कि उन्हां दे करियर ते निजी जीवन ते भी बहुत ही ज्यादा डूंघा असर पाया सी।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ा स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 एम ते 4-6 संदेश अलग दिन से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है गया ना, उसनों सुन के तुसी हैरान जरूर हो जाओगे, क्योंकि वह भट्ट खानदान के नाल जुड़े हुए है। आलिया भट्ट बिल्कुल भी नहीं है नाम, इस बारे सोचियो ना, ते ना है शाहीन भट्ट, राम है जी पूजा भट्ट। जी हाँ, पूजा भट्ट का नाम इस लिस्ट विच शामिल है तो सब हैरान हो गए होंगे, पर यही सच है। पूजा भट्ट नूं शराब की लत लग गई थी। पूजा भट्ट ने खुद खुल के दस्या है कि एक समय उन्होंने जिंदगी शराब की लत की वजह नाल बुरी तरह के नाल प्रभावित भी हुई सी, जिस तों निकलण दे विच उन्हां नूं काफी टाइम लग गया सी।
1: एक दो गल्ला करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां, क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां तो तुहानूं दसणियां मेरा फर्ज है।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: यार राहुल तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal janglaan vich aag lagdi hai. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच आग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार, ब्रिस्बन द्वारा अधिकारी।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वंसर वाले ते जी आर चे संदेश अलग दिन बने हुए हो। इस लिस्ट दे विच अगला नाम बहुत ही खूबसूरत अदाकारा दा है, बहुत कई साल पुराने 80s से 1780s दे जिहड़े दौर दी एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, उन्हों का नाम है इस लिस्ट विच शामिल। बॉलीवुड दी दिग्गज एक्ट्रेस सी परवीन बॉबी, पर शराब दी लत ने ना उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है, इस करके उन्होंने करियर ही है जो बर्बाद हो गया सी। पता हो परवीन बॉबी अपने समय की हिट एक्ट्रेस सी, उन्होंने बहुत सारिया शानदार फिल्मां दित्तियां ने, उन्होंने खूबसूरती का जलवा तो अज भी बरकरार है।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki karna hai. अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: इवेंट शान के साथ पेश करता है ग्रैंड भजन नाइट। सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम, ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।
5: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
6: Hey, yo, Sean. Atan di khitti atan okh di nak tak mere rahan di makama naal. Ho mere rahan di makama naal pak thak. Sahaj subhanu rakhe.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। इस लिस्ट विच एक बहुत ही दिग्गज नाम भी है जो साढ़े विचकार नहीं है कि पर नाम होना था है। नाम है जी धर्मेंद्र। हिंदी सिनेमा दे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया है कि पीन की लत के कारण उन्होंने करियर विच गिरावट जरूर आई है। फिर फरदीन खान का नाम भी इस विच शामिल है। ड्रग्स और शराब की लत के कारण फरदीन खान नू रीहैब जाना पै गया से जिस नाल उन्होंने करियर नू झटका लग्या। प्रतीक बब्बर नाल भी अजिहा ही होया। राज बब्बर और समिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का करियर भी नशे की लत करके ही प्रभावित होया है। तो ये सारे नाम है जो मेरे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में शामिल है।

हाँ देखो जिन्ने भी नाम मैं हुण दस्से हैगे ने ना, ओह नो डाउट बहुत ही वधिया कलाकार ने, सारे दे सारे बहुत ही ज्यादा शानदार एक्टर्स हैगे ने। तुहानू कौन सब तो ज्यादा पसंद है ते किस दा तुहानू लगता है कि ओह जिहड़ा समां उहनां दा खराब गया हैगा ओह नहीं जाणा चाहीदा सी, ते जो शराब दे नशे दे विच ना डुबदे ते उस टाइम नूं ना बर्बाद करदे तां अज होर ज्यादा उपर होणे सी। दसो जरूर तुसी, जुड़ो साढ़े नाल रेडियो ब्रिसवानी 107.1 FM साडे फेसबुक पेज से जित ब्रिसवानी @ब्रिसवानी.com साडी ईमेल आईडी है, जरिए जेड़ा भी तुहानू चंगा लगता है तुसी अपना पर साडे नाल पता जरूर करते रहा करो। बाकी मैं तो तुहानू यही कहना है जी कि कल करदे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
3: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
4: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. Yadi aapki dhoomrapan karne ki history rahi hai तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
6: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी।
7: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट फर्स्ट इश्यूड इन 1922 अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस ओन्ड आउटराइट ट्रांसफर रेडी फॉर द बायर हु अंडरस्टैंड्स that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on...
2: All event Shan ke saath pesh karta hai Grand Bhajan Night. सनातन बाल रामायण के साथ सिडनी के अविनेश राम और ब्रिस्बेन भक्ति बॉयज के साथ क्वींसलैंड के हितेश सामी। फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिल क्रेस्ट में। $20 टिकट में है भोजन भी शामिल, नंगोना और स्नैक्स भी बिकेंगे। मेन स्पॉन्सर एलिवेट फोकलिफ्ट। ग्रैंड भजन नाइट फ्राइडे 28 अगस्त 6:30 PM लोगन वेस्ट कम्युनिटी हॉल वाइन ग्लास हॉल हिलक्रेस्ट। समाज संस्कृति और मेल मिलाप का समर्थन, भक्ति संगीत और समुदाय की एक शाम। ग्रैंड भजन नाइट। कोऑर्डिनेटर अरविंद दत्त 0452-584-926। ग्रैंड भजन नाइट।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं, हर समस्या के सिर्फ तीन समाधान हैं। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सब्र करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। श्रीमद् भगवद गीता की ये बात जिंदगी के हर मोड़ पर, हर परेशानी में हमारे लिए बहुत जरूरी और कारगर है। अगर हम इसे याद रखें तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस बड़े ही आराम से ले सकते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जिंदगी के ऐसे ही पन्नों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, जीवन आधार में उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर, उस वाहेगुरु अल्लाह और जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़कर उनकी कही गई बातों पर जरा ध्यान देके गौर करके अपने जीवन को एक आधार देते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं सताक्षी आपके साथ जीवन आधार में और लेकर आई हूं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर यही सफर। आज एक नई सुबह, एक प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी से भरी सुबह आपके लिए फिर से। आइए इसे एक अगले गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार।

कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसए मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही। ऐसे घटघट हरी हैं दुनिया देखे नाही। रेडियो प्रसानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं श्रोताओं जीवन आधार सताक्षी के साथ। हम उस शक्ति को जो इस दुनिया को चला रही है, जिसे हमारी खुशी हमारे गम हर चीज का ख्याल है, या जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आती है, उसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते हैं। मंदिर में, चर्च में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, हर जगह जाके हम उस शक्ति को खोजने की, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमें उसकी कृपा मिल सके, हम उसे प्राप्त कर सकें। लेकिन देखा जाए तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है। आपके अंदर ही वो राम है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर ही वो अल्लाह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अपने मन के अंदर झांकिए। मन के अंदर कैसे झांकेंगे? ऐसे नहीं झांकेंगे। मन के अंदर तब झांकेंगे जब अपने मन को समझ पाएंगे। एक बार मन को समझ गए तो ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमेशा आपको हर जगह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आइए इसी बात पर एक और गीत के साथ बढ़ते हैं आगे हमारे जीवन आधार के सफर में। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

1701 AM पर जीवन का आधार, जीवन आधार श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज अपने जीवन को आधार देने की, उसे समझने की, जानने की हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

दोस्तों हम मनुष्य भी कितने अजीब हैं ना, मतलब दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, जब सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो अक्सर रातें हमारी सोकर बीतती हैं, दिन खाकर गुजर जाते हैं। हर एक चीज की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, हम दुनिया की सबसे कीमती या बेशकीमती चीजें पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में सारी चीजें हमारे साथ हों, हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो सुख सुविधा से जुड़ा जो हमारे पास ना हो, है ना। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सांसारिक कीमती चीजों को पाने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उस ईश्वर से बढ़कर, उस परमपिता परमेश्वर, उस अल्लाह, उस वाहेगुरु से बढ़कर भला हमारे जीवन में कीमती और क्या हो सकता है। आपको जो मिलता है वो भी उसकी मर्जी, और जो नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी। इसी बात पर ही अगला गाना सुनिए। इसे और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, आप हैं सताक्षी के साथ।

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह एक बार फिर से रेडियो पुलिसवानी 1701 एम पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

वाणी 1701 एम पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। हम अक्सर कहते हैं कि मन हमेशा सही होता है, मन हमेशा सच बोलता है, और इसीलिए जो मन कहे वही करना चाहिए। लेकिन यही मन है दोस्तों जो लालची है, जो सब कुछ खुद के लिए पाना चाहता है, सब कुछ खुद के लिए करना चाहता है। यही मन है जो चंचल है और चोर भी है, हर तरफ भागता है, आज यहाँ तो कल अपने फ्यूचर की न जाने कितने ज्यादा दिनों के फ्यूचर की प्लानिंग कर डालता है। मन आपका आज में रहता ही कहाँ है, वो तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन आपका मन पहुंच जाता है। लेकिन इस मन के हिसाब से मत चलिए। माना कि ये मन हर जगह पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी इस मन के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि ये मन ही है जो हर पल बदलता है, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। कहते हैं ना, अभी आप कुछ सोच रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। हमारा मन हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेता है। मन के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मन को चलाइए, क्योंकि अगर एक बार आपका मन आपको कंट्रोल करने लगा तो परेशानी बहुत बहुत हो जाएगी। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और रहिए

आधार आप सुन रहे हैं हर रोज की तरह आज एक बार फिर से रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर, और इस आधार में आपका साथ निभा रही है सताक्षी। आज ईश्वर को, उस शक्ति को जो इस संसार को चलाती है, उसे पहचानने की, जानने की एक छोटी सी कोशिश, क्योंकि हम उसे पूरा कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हम समझ पाए हैं उस ईश्वर को, उस परमपिता को, उसको जानने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारे जीवन आराधना में। हमें यूं ही सुनते रहिए और आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

जिंदगी को इंजॉय कर सकें। फिर तो पता नहीं ये जिंदगी कब मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा जिएंगे तो ज़्यादा इस जिंदगी को संवार पाएंगे। लेकिन दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जिंदगी एक दिन की है, चार दिन की है या फिर सालों की है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे जीते कितना है। बहुत सारे लोग तो बुजुर्ग भी हो जाते हैं लेकिन जिंदगी उन्होंने जी ही नहीं होती है। कम से कम वैसे मत बनिए। जिंदगी चाहे एक दिन की ही क्यों ना हो लेकिन इसे इस अंदाज में गुजारिए कि ये दुनिया का एक सबसे खूबसूरत और प्यारा पल रहे और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएं, आप अपनी जिंदगी का हर पल मुस्कुराते हुए बिता पाएं और औरों को मोटिवेशन दे पाएं। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्मानी, आपके साथ है सताक्षी।

वाणी 1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। अक्सर हम सब अपनी जिंदगी बहुत बड़ी चाहते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी हो ताकि हम जिंदगी के हर एक पल का मजा ले सकें और ज्यादा दिन जी सकें, ज्यादा दिन

दोस्तों, ये था आज एक बार फिर से जीवन आधार पर मेरा आपके साथ एक और साथ। कल फिर से एक ऐसे ही साथ पर हम और आप साथ साथ चलेंगे। कल हमें सुनना मत भूलिएगा और आज के सफर से आप लूंगी इजाजत।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हाँ जी, तो दोस्तों सबसे पहले आइए देखते हैं कि ब्रिस्बेन का भाई आज ये जो मौसम शोसम है वो कैसा है, यानी कि बात करते हैं आज के वेदर की। दोस्तों ब्रिस्बेन में वेदर जो है थोड़ा सा मिक्स्ड रहने वाला है। पार्टली अगर बात करें तो क्लाउडी जो कंडीशन है उसके साथ लेट मॉर्निंग और आफ्टरनून में शावर्स के चांस दिख रहे हैं। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं अम्ब्रेला या लाइट रेन जैकेट हैंडी रखना स्मार्ट आइडिया है। और एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर दोस्तों, यूवी लेवल हाई रहने का फोरकास्ट है, इसीलिए रेन क्लाउड्स देखकर सनस्क्रीन को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। और वैसे भी दोस्तों, वेदर हो या फिर लाइफ, कभी सनशाइन कभी क्लाउड्स कभी रेन, लेकिन जी इसका मतलब ये नहीं कि दिन खराब है। समटाइम्स क्लाउडी स्काई सिंपली मीन दोस्तों सनशाइन इज ऑन इट्स वे। सो हमेशा खुश रहिए और हमेशा चमकते रहिए इस बेहतरीन सूरज की तरह। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो अब वक्त है ब्रिस्वानी न्यूज अपडेट का। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट ब्रिस्बन ट्रांसपोर्ट अपडेट की बात करेंगे। ब्रिस्बन फेरी सर्विसेज को लेकर कॉम्यूटर्स को डिसरप्शन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिवर सिटी फेरीज वर्कर्स के इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से जो है एडिशनल फेरी डिसरप्शन अनाउंस हुए हैं। इसीलिए अगर आप डेली फेरी से ट्रैवल करते हैं तो निकलने से पहले अपनी सर्विस का लेटेस्ट स्टेटस चेक करना बेटर रहेगा। और ब्रिस्बन की फ्यूचर प्लानिंग से जुड़ी एक बड़ी स्टोरी भी सामने आई है दोस्तों। 2032 ओलंपिक्स और पारलिंपिक्स जो उसकी प्रिपरेशन है उसके बीच ब्रिस्बन के गाबा को लेकर असेसिबिलिटीज और वेन्यू स्टैंडर्ड्स पर डिस्कशन चल रहा है। स्टेडियम को फ्यूचर ओलंपिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड करना पड़ेगा या नहीं, इस पर अभी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू है। और ब्रिस्बन के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी एक एक्साइटिंग अपडेट है, वो क्या है जानेंगे थोड़ी ही देर बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बानी में। सो अब दोस्तों स्पोर्ट्स लवर के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट आ रही है। ब्रिस्बेन रोर ने फॉर्मर पेरिस सेंट जर्मन एकेडमी ग्रेजुएट वगिल्यू पोस्टोलाची को साइन किया है, जो कि 2026-27 ए लीग मैन सीजन के लिए क्लब का पार्ट होंगे। है ना एक्साइटिंग न्यूज। इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

पोस्टोलाची फॉर्मर पीएसजी एकेडमी प्लेयर अब ब्रिस्बेन रोर का जो के अटैकिंग जो है उसके ऑप्शन का स्ट्रेंथन जो है वो करेंगे। और ब्रिस्बेन 2032 की तरफ से बढ़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो यंग पारा एथलीट्स है उसके लिए भी एक नया पाथवे क्रिएट किया जा रहा है। पारा फ्यूचर कप एमर्जिंग पैरालंपिक एथलीट्स को कंपटीशन एक्सपीरियंस देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, एक ऐसा स्टेप जो कि फ्यूचर ब्रिस्बेन 2032 जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, स्पोर्ट्स सिर्फ ना मेडल का नाम नहीं है, कभी कभी स्पोर्ट्स एक बच्चे को ये सिखाता है कि ट्राई अगेन, और शायद लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन भी यही है। इसीलिए हमें इस चीज को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, लाइफ में जीत हार चली ही रहती है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी ब्रिस्बेन वालों, अगर आपको ब्रिस्बेन में ना एंटरटेनमेंट और लाइव शोज पसंद है तो ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज अनाउंस हुआ है कि पॉपुलर म्यूजिकल अ ब्यूटीफुल नॉइस द नील डायमंड म्यूजिकल ब्रिस्बेन आ रहे हैं। शो ब्रिस्बेन के ल्यूरिक थिएटर एट क्यू पैक में मार्च 2027 से स्टार्ट होगा और टिकट्स की जनरल सेल्स सितंबर 4 से एक्सपेक्टेड है, यानी कि प्री सेल्स जो है वो अगस्त 31 से शुरू होने वाली है। और थिएटर्स लवर्स के लिए भाई एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है, वो ये कि शेरलॉक होम्स द मिस्ट्री ऑफ द वाल्करी नवंबर 2026 में क्यूपैक प्ले हाउस में रिटर्न करेंगे 14 से 29 नवंबर तक, और म्यूजिक लवर्स ब्रिस्बेन में सितंबर

वन से लेके फोर तक यानी कि फर्स्ट टू फोर्थ बिग साउंड आ रहे हैं। फोर्टिट्यूड वैली में राइजिंग आर्टिस्ट, लाइव शोकेसेस, म्यूजिक इंडस्ट्री डिस्कशन और नेटवर्किंग का बड़ा इवेंट होगा, तो ब्रिस्बेन म्यूजिक के लिए रेडी हो जाइए। आइए फिलहाल मैं आपको सुनाती हूँ ये ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी सुन रहे हैं चांदनी का सफर आपके अपने दोस्त आरजे चांदनी जैन के साथ। तो अब थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, आज का ब्रिस्वानी मॉर्निंग थॉट जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कैपेबल हैं, बस अपने कल से बेटर बनने की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हम दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ को जज करने लगते हैं। किसी का करियर फास्ट ग्रो कर रहा है, किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी की फैमिली कंप्लीट हो रही है, किसी का ड्रीम अचीव हो गया है और हम सोचते हैं मेरा कब होगा। लेकिन याद रखिए, हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। आप लेट नहीं है, आप अपनी जर्नी पर ही है। सो टुडे कंपैरिजन कम, ग्रेटिट्यूड ज्यादा रखिए और दोस्तों अपने ड्रीम्स के लिए ना एक छोटा सा स्टेप जरूर उठाइए। कभी भी हार मत मानिए, जिंदगी सबकी सेम नहीं होती है, सबके स्ट्रगल्स अलग अलग होते हैं, तो उसका फल, उसका फ्रूट्स भी अलग अलग टाइम पे ही मिलता है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, कहना भूल ही गई भाई, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे रैप करते हैं क्योंकि कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच नई बातें नए जज्बे के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। और दोस्तों, हमेशा ब्रिस्वानी में नए नए शोज, नए नए कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए, जहां पर हमें बहुत सारी सीखने को भी चीजें मिलती है, एंटरटेनमेंट मिलता है, बहुत सारे लेसन भी मिलते हैं। सो ब्रिस्बेन, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ और साथ ही स्माइल मोर। जी हाँ, और अपने दिन को किसी और के मूड के हाथ में मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, सेम फ्रीक्वेंसी, फ्रेश एनर्जी, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM। ये सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। निर्णायक दिन आने वाला है, अमेरिका ने ईरान को दी आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी। अमेरिका की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तीखे बयानों का दौर जारी रहा। इन प्रतिबंधों का असर इस्लामिक रिपब्लिक और तेहरान के सबसे अहम व्यापारिक साझेदारों पर पड़ सकता है। इन साझेदारों में चीन भी शामिल है। न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया। कानून बनाने की तैयारी में सरकार। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर न्यूजीलैंड सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की पार्टी संसद में नया बिल पेश करने जा रही है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। टेक कंपनियों पर नकेल कसने के लिए इस कानून में भारी जुर्माने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके वैश्विक राजस्व का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ड्रोन गुब्बारे और पतंगे भेज रहा गाजा, इसराइल ने लगाया आरोप, फिर किया हवाई हमला। गाजा पट्टी में इसराइल के 2 हवाई हमलों में कम 2 लोगों की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हैं। मरने वालों में 4 साल के बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना तब हुई जब इसराइल ने गाजा से उसकी ओर गुब्बारे, ड्रोन और पतंगे छोड़े जाने के बाद हमलों को और तेज करने की धमकी दी। स्थानीय निवासियों के अनुसार एक हमला मध्य शहर जवायदा की एक इमारत पर हुआ। इससे पहले इसराइली सेना ने इमारत के मालिकों को जगह खाली करने की चेतावनी दी थी। आइए बढ़ते हैं अब भारत की ओर और सुनते हैं भारतीय खबरें। असम में बाढ़ और पुनर्वास पर मंथन, सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को राज्य में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से नुकसान, राहत कार्यों और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही बैठक में असम से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। वीवीआईपी दौरों में ऐसी चर्चाएं आम बात, पीएम मोदी ट्रंप की बैठक पर सर्जियो गोर के दावे पर सरकार का स्पष्टीकरण। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक को लेकर मचे घमासान पर भारत सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। भारत सरकार का यह स्पष्टीकरण अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के पीएम मोदी की उपस्थिति में मीडिया से सवाल न लेने का अनुरोध किया गया था। जवाब में कहा गया है कि किसी भी वीवीआईपी दौरे से पहले नेताओं की सार्वजनिक उपस्थिति की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा करना सामान्य प्रक्रिया है और इस संबंध में भारतीय पक्ष ने ऐसे दौरों के लिए अपनी मानक प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी थी। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन की समाप्ति तक 18 गेंदों में ही भारतीय टीम ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट कोलंबो में खेला जा रहा है और दूसरे दिन की समाप्ति तक टीम इंडिया मजबूत स्थिति में दिखाई दी। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाया, जबकि दूसरे दिन ध्रुव जुराल ने शतकीय पारी खेली। दूसरे दिन के अंत में भारत ने 3 ओवर की गेंदबाजी की और श्रीलंका के 2 विकेट हासिल किए। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले दोस्तों। जमाना कहां से कहां चला गया है। जी हाँ, वाओ। ओके, उम्मीद है गाना आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक कुछ नया विजन का गाना था। नया नहीं, ये कितना पुराना है?
1: वेरी ओल्ड।
0: हाउ ओल्ड इज इट?
1: आई डोंट नो,
0: 15 20 इयर्स, मेबी 15 इयर्स,
1: मोर मेबी, आई थिंक मोर।
0: टाइम रियली फ्लाइज। चलो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आपको बतला दूं, भूलना मत, सताक्षी के साथ हो जाएंगे इस कार्यक्रम के बाद में। और फिर 11 बजे से आप संदेश के साथ अपना पंजाबी प्रोग्राम सुनेंगे, और 3 बजे से निविया के साथ। ओके,
1: ऑलराइट,
0: चलो प्लेइंग अ ओल्ड सॉन्ग। इट्स
1: फ्रॉम द 70s, आई थिंक।
0: ओह रियली, दैट्स नाइस। ओके, गो फॉर इट।

ओके नाउ चलिए थोड़ा सा कुछ पुराने गीत भी हो जाए. व्हाट डू यू थिंक? ऑलराइट, कुछ लोग हैं हमारे जो पुराने गीत पसंद करते हैं ज्यादा, तो चलो सबको हम खुश रखेंगे. और एक बहुत सा प्यारा गीत है रफी साहब की आवाज में और आशा भोसले, शमी कपूर और कौन था इसमें बताइए.

जी हाँ दोस्तों, कुछ पुराने गीत और आपको याद रहे अभी इस कार्यक्रम के बाद में सताक्षी के साथ हो जाएंगे दोस्तों, आप जरूर सुनिएगा। फिर 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम होगा संदेश के साथ और 3 बजे से निविया के साथ। तो चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगर आप भी कुछ सुनना चाहे तो प्लीज डू गिव अस अ कॉल, ठीक है।

0: तो हाँ दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे विदा लेंगे कुछ ही देर में, और चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और व्हाट आर यू गोइंग टू प्ले नाउ?
1: ओके, आई विल प्ले समथिंग फ्रॉम 1969।
0: ओह, दैट्स इवन बेटर। ओल्ड इज गोल्ड।

0: जी हाँ दोस्तों, कुछ पुराने चुने हुए गीत भी आप सुन रहे हैं और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। यू प्लेइंग समथिंग?
1: या
0: ओके, गो अहेड। और अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो तो आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों।

और टाइम बहुत ज़ोर से भाग रहा है दोस्तों, तो चलिए अगला जो गीत है जिंदगी और मौत का गाना है 1965 और प्रदीप कुमार आपको याद होगा शायद, फरियाल। ओके, पुराना गाना है दोस्तों लेकिन बहुत प्यारा गाना है।

0: जी हाँ, दिल लगाकर हमने समझे जिंदगी क्या है। और चलिए अब आखिरी गीत है दोस्तों, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा साथ दिया। कल है वेंसडे, सॉरी कल है वेंसडे, कल हम फिर आएंगे। और अब आप तैयार हो जाइए दोस्तों, सताक्षी के साथ आप कार्यक्रम सुनेंगे फिर, भूलना मत 11 बजे से आप सुनेंगे संदेश को पंजाबी प्रोग्राम,
1: और 3 बजे
0: निव्या के साथ
1: और क्या?
0: कल फिर मिलेंगे, फिर उसके बाद में सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा साथ दिया।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डे।
0: यस
1: एंड
0: व्हाट,
1: टेक केयर एंड वी विल सी यू
0: टुमारो।
1: It's not a promise, but we'll do our best. Yep. So, namaste. Toodle-doo.

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अलार्म नहीं है भाई सुबह का, ये तो सताक्षी की गुड मॉर्निंग है आपसे और खासकर उनसे जिनको अभी भी गुड मॉर्निंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। देखिए उठ जाइए, सुबह जो है वो ढेर सारे एहसास तो आपके लिए लेकर आती ही है, लेकिन एक चीज और है जो खास आपके लिए हर रोज नई सुबह लेकर आती है। आपकी जिंदगी में एक नया दिन और आपके लिए एक नया मौका उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिन्हें आप बेसब्री से पूरा करना चाहते थे कल रात को। बस यही सोच रहे थे कि एक दिन और मिल जाता तो बस हम कर ही डालते इसे पूरा। तो चलिए आज फटाफट से उठ जाइए और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज जो ये दिन आपको मिला है इसे जाया मत करिए, इसे वेस्ट मत कीजिए और इसको खूबसूरत बनाइए अपने नए एहसासों और मोहब्बत के साथ। मैं हूँ सताक्षी दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर आज एक बार फिर से, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने, ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स जो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलके आज के इस जर्नी की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। आगे बढ़ूं उसके पहले जो खास दिन जिनका आज है उनको हम विश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो ब्रिस्पानी विश करता है उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आपकी जो जिंदगी है महकती रहे, खुशियों से चहकती रहे और आप हर दिन इस जिंदगी को खूबसूरती से जीते रहे, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहे और सेल्फ लव की तरफ जरूर बढ़ते रहे क्योंकि खुद से मोहब्बत बाबू मशाय बहुत जरूरी है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्हें मोहब्बत खुद से नहीं किसी और से हो रखी है, तो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चाहे वेडिंग एनिवर्सरी आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लव मैरिज हुई थी या फिर आपकी हुई थी अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज तो मैरिज है और मैरिज के बाद चाहे लव हो या अरेंज हो बीवी बीवी होती है। और आप ना भी चाहे तो भी वो आपको बता देंगी कि भाई आज कुछ स्पेशल करना है, तो उनको बताने का मौका मत दीजिए और आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बनाइए और आज एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि जो रोज की जद्दोजहद है, स्ट्रगल्स है, उनके चलते आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, आज वो वक्त आप जरूर दें। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

वेलकम बैक इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रिस्मानी 1701 एम पर। यू नो कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह का लाइफ रूटीन फॉलो करते करते आप थक जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जब आप एक ही जगह पर काम करके एक ही तरह का रूटीन फॉलो करके थक रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका एक ऐसा है, एक ऐसी थेरेपी है जिसके थ्रू आप इससे बहुत ही जल्द बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, और मैं जब कहूंगी तो आपको शायद ये लग सकता है कि ये तो बहुत पुराना तरीका है सताक्षी, बट यू नो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और एक हीलिंग थेरेपी की तरह ही आपके लिए वर्क करता है। तो जिस भी जगह पर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और आप कोशिश करके भी बाहर कहीं घूमने नहीं जा पा रहे, तो उस जगह को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, मतलब एक दिन की छुट्टी तो, एक दिन का एस्केप तो उससे बनता है और आप देखेंगे कि आप कितना लाइट, कितना बढ़िया फील कर रहे हैं। ट्राई कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

लाइफ में सब कुछ बनिएगा लेकिन सुटुक सुइया मत बनिएगा। सुटुक सुइया, ये वर्ड सुना है कभी आपने? नहीं सुना, चलिए हम सुनाते हैं। ये सुटुक सुइया, ये जो वर्ड है ये आया है सुटुक, सुटुक से, सुटुक सु सुटुक। हाँ, तो ये जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन सुटुक सुटुक करके आप पर कमेंट जरूर पास करते रहते हैं। उनके दिल में गुस्सा भरा रहेगा लेकिन फिर भी वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। वो आपको पिंच करते रहेंगे लेकिन आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। और फाइनली जब आपके अंदर गुस्सा आ जाए और वो बस निकलने वाला हो तो कहेंगे ये क्या, तुम तो नाराज हो गए। हाँ, और ये वाले जो सुटुक सुइया लोग होते हैं ना, ये आपके आसपास होते हैं, तो ऐसे लोगों को एक छोटी सी पिंच उभाइए और बलून की तरह फोड़ दीजिए। लेकिन लेकिन अपनी लाइफ में कभी सुटुक सुइया बनिएगा नहीं। चलिए फिलहाल आपके साथ आगे चलते हमारे एक बढ़िया से गाने के साथ, जो शायद इस मॉर्निंग आपको इन सुटुक सुइया के खिलाफ जो आपके गुस्सा भरा है उनसे थोड़ा सा फ्री कर दे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिज, फानी सताक्षी के साथ हैं आप।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आप है सताक्षी के साथ और मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों ये वक्त है आज एक बार फिर से गानों को बैक टू बैक सुनने का यानी गानों की हैट्रिक का। सो चलिए गानों की हैट्रिक के इस पहले ट्रैक के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सुनते रहिए सताक्षी के साथ गानों की हैट्रिक।

पानी पर गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई बेहतरीन और खूबसूरत गाने। लेकिन गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक दोबारा सुनने को थोड़ी ना मिलेगा इस प्रोग्राम में। आइए इसे एंजॉय करते हैं और इसके उस पार ढेर सारी बातें आपसे होंगी। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

पहले ना मैं अपनी हर बात को एक्सप्लेन करती थी लोगों को, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं लोगों को समझाऊंगी और वो समझ जाएंगे। हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करवाने की आदत थी मेरी। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि जो मेरे अपने हैं उनको सफाई की, क्लेरिफिकेशन की जरूरत तो है ही नहीं। उनके लिए सिर्फ मेरा ये कह देना कि हाँ ऐसा हुआ था, ये नहीं हुआ था, बस काफी है। किसी क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन जो मेरे होना चाहते ही नहीं है, उनके आगे मैं हजार अल्फाज भी पेश कर दूं तो भी उन्हें जो नहीं समझना है वो उन्हें नहीं समझना है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि अब मैं किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं दूंगी। अब जिन्हें मेरी कहानी में विलेन बनना है, उन्हें कौन सा कैरेक्टर अपनाना है, ये मैंने उन पर छोड़ दिया और मैंने सफाई देना बंद कर दिया। जिसे मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचे, जिसे मेरी कहानी को जैसे लिखना है वैसे लिखे, उसके लिखने से मेरी कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना। बस तो सारी अफवाहों पे अब मैंने ध्यान देना कर दिया है बंद और अपनी जिंदगी को बिंदास जीना कर दिया है शुरू। आइए उसी बिंदास जिंदगी के नाम सुनवाती हूँ आपको ये अगला ट्रैक, और सुनिए अपनी मॉर्निंग को आप भी ऐसे ही एक पावरफुल डिसीजन लेकर आज स्ट्रांग बनाइए। और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

यू नो, कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में समझदारी है थोड़ा रुक जाना और रुककर ये सोचना कि जहाँ जा रहे हो वहाँ जाना भी है कि नहीं। जिस मंजिल के पीछे भागे चले जा रहे हो, जिस मंजिल के पीछे भाग रहे हो, उसे पाना भी है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ना दोस्तों, हम सिर्फ भागने के लिए भाग रहे होते हैं, रुक जाएंगे तो हार जाएंगे, इस डर से न जाने कहाँ जा रहे होते हैं। और फिर जिस मंजिल के पीछे भाग रहे थे उसे पाकर भी कोई खुश नहीं होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भागने में ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और इसीलिए रास्ता बदलना भी पड़े तो बदल दीजिए, क्योंकि कई बार ये दुनिया मिल भी जाए तो भी क्या, ये बहुत देर से समझ आता है। सुनते रहिए, इट हैपेंस रेडियो प्रिस्वानी पर, आपके साथ सताक्षी है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन।